0: फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स। अब मिसिसागा के बाद स्कारबरो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-567।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से

0: पीछे जा रहे हैं और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपनी ऑप्शंस के लिए तो हमारे से एक बार जरूर आके डिस्कस कर सकते हैं एंड वी विल गाइड यू के स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज आपको बेस्ट क्वालिफाई करा सकती है। दूसरी चीज अर्शद भाई जाने से पहले एक जरूर कहूंगा, अगर कोई भी भाई बहन कोई भी बच्चा शादी निकाह कराकर इंडिया से कनाडा से मिडल ईस्ट से या पाकिस्तान से वापस आए हैं तो प्लीज प्रोफेशनली एप्लीकेशन कीजिएगा और उसके लिए एडवाइस चाहिए तो हमसे आके राब्ता कीजिए। और अगर बेटर चीज ये है कि आप जाने से पहले हमारे पास होके जाइए पूरे सर्कमस्टांसेस बता के उस तरह से चेकलिस्ट लेकर जाइए और उस चेकलिस्ट के ऊपर काम कीजिए। और ये ना सोचिए कि इमिग्रेशन की कोई भी एप्लीकेशन इजी एप्लीकेशन, आज की डेट में हर एप्लीकेशन इज अ टफ एप्लीकेशन, ये सोचते चलिए। बिकॉज अगर आप स्टेटस से लूज होते हैं या एप्लीकेशन किसी वाले से वापस आ जाती है तो आपने छह महीने से एक साल अपना खराब कर लिया और उस टाइम में आप ना काम करने की आपके पास परमिशन रही ना कुछ करा। तो प्रोफेशनल एडवाइस के लिए एक बार हमसे जरूर रब्ता कीजिए एंड गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन। हमें 19.5 साल का अर्सा हो गया इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, 18.5 साल तो हमें 1137 डेरी रोड ईस्ट पे हो गए मिसेज आगा में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस के लिए एक बार जरूर रब्ता कीजिए एंड वी विल गाइड यू एंड सजेस्ट यू कि ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट काम कर सकती है। और आईसीसी इमिग्रेशन का आरडी और एमडी की टीम का नंबर है जी 905-461-2424 905-461-2424
1: जी अर्शद भाई, थैंक यू वेरी मच एमडी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और फिर नेक्स्ट वीक आपसे
0: बात करते हैं, थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज। नंबर नोट लीजिए 905-461-2424 905-461-2424 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM।
2: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं, इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्राइवेट या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन पर्सनल लोन या बिजनेस लोन 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। एसएसआर ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टीमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक्स सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप एसएसआर ऑटो सर्विस 921
3: पे पे रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एफएम 101.3 स्टूडियोज में राबते के नंबर 416-593-0003। टोरंटो और इसके गिरद नवाह में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें। टोरंटो और इसके गिरद नवाह में आज़ान मगरिब।

0: நமஸ்தே ரேடியோ.
1: குட் மார்னிங் டொராண்டோ. நமஸ்தே டொராண்டோ கா ஆகாஷமா நேபாலியோருக்கு ஆவாஸ். நமஸ்தே ரேடியோ வாய்ஸ் ஆஃப் த நேபாளீஸ் கம்யூனிட்டிக்கு கார்யக்ரம் ஹரேக் சாத்தாக்கு சனிபார் பிஹான 7:30 8 கெனடியன் மல்டிகல்ச்சர் ரேடியோ 101.3 FM பாட கனடாக்கு கிரேட் டொராண்டோ ஏரியா ர இன்டர்நெட் பிரவிதி மார்ஃபத் ஹாம்ரோ வெப்சைட் www.namasteradio.ca பாட பிரத்யட்ச பிரசாரம் சுன்னு ர அஹிலே நமஸ்தே ரேடியோ ர டிக்டக் கோபி நமஸ்தே ரேடியோ ஃபேஸ்புக் டிக்டக்மா லைவ் ஹெரிக்கு சம்பூர்ண தர்சகருமா ம காரியக்கம் உதூஷக எவன் தமாய்க்கு ஆவாஜ்க்கு சாதி அனில் தாப்பாக்கு ஹார்திக் ஞானோ அபிவாதன் ர சுப பிரபாத். எஸ்எஸ்வி இன்டர்டெயின்மெண்ட் தாரா உற்பத்தி ததா பிரசாரித சாப்தாக நமஸ்தே ரேடியோ காரியக்கம்லை தப்பைஹர்ல ஆனோ சமய அனுகூல ஜுன்சுக்கு பேலா ஆனோ வெப்சைட்மா கை ஆர்காய்மா லகன் கண்ணுக்கு ஹண்டமா சுன்ன பண்ணி சக்னுஹ்னே. आज May 16, 2026 तदनुसार 2083 साल जेठ 2 गते चतुर्थी शनिवार को दिन यो सोमवार विक्टोरिया डे हॉलिडे पड़े हुए लंग विकेंड को संपूर्ण कैनेडियन बधाई र शुभकामना नमस्ते रेडियो टोरंटो दिन चाहन्छ। आज को कार्यक्रम में सदाझ कर्णप्रिय गीत संगीत सुनाउन साथ ही समसामयिक विषय में कुराकानी करने कार्यक्रम जिज्ञासा समावेश कर कार्यक्रम जिज्ञासामा हामीसँग दुईजना अतिथिद्वय आउनु भएको छ जसले यो अर्को आउने आइतबारको दिन मेको 24 तारिकको दिन सिनियर प्रोग्राम लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ फर्मर मिसेस नेपाल क्यानाडा सृष्टि श्रेष्ठ अमात्य र रनिङ मिसेस नेपाल क्यानाडा मेघना गजमेर। उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गर्नेछौँ वेस्डो राइज बियोन्ड फाउन्डेसनले गरिएको कार्यक्रम यो मेको 24 तारिकमा जसमा एसोसिएट विथ द नेप्लिज केनेडियन पेजेन्ट इङ्क छ उहाँहरूसँग यो बारेमा जानकारी लिन एकैछिनमा हामी बालकोसारी गर्नेछौँ। तर कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ यो पहिलो साङ्गीतिक कोसली र त्यसपछि मदनजीबाट समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुनौ यो गीत तपाईँहरूको निम्ति।